0: This is Radio Dhorbarahi, 103.8 MHz.
1: Station 1. Studio Talchit.
2: Aile, Diuso ko ek bajyo.
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो घर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 93 01
4: Cameras, standby.
0: Reload music.
4: Nepali Sachitra ka Git Sangeet Haru.

0: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज।
1: स्टुडियो टाइम अहिले दिउँसोको 4 बज्यो।
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।

0: Yangi Goila Yeno
1: Kanung Rose Mamhegin
2: Mosia Chamamu, Chamosia Lumamu, Lumosia Mine Mamu,
0: Yangi Rimtim Dingi, Jot Panalave Lagiri, Yangila, Lolono, Prayaski,
3: Karikram Adivasi Sansar.
0: रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज जरी
1: नाको रसेमु नजाटनी पट्टा लाफा को केरसे की होसनी है।

ஆல்ரெடி சங்கர் பரிகார் டைம் அசாத் அசாத் தீமிய कार्यक्रम प्रस्तुत लक्ष्मी सुनार अब सन्डे आउने वाचकका साथमा यो गीतलाई सार्दैमा कार्यक्रम प्रस्तुत लक्ष्मी सुनार पनि बिदा हुने आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।

0: रक्षित गरी फिस्टेल आयुर्वेद तथा फर्टिलिटी सेन्टर गैरापाटन पोखरामा कार्यरत
1: वरिष्ठ निसन्तानपन विशेषज्ञ डाक्टर अनुहिराजन आगामी भाद्र 13 गते दोस्रो शनिवार वीरेन्द्र स्वास्थ्य क्लिनिक दुलेगौंडामा आउँदै हुनुहुन्छ।
0: सम्बन्धित समस्या भएका दम्पतीले उपचार तथा परामर्श लिएर मौकाको फाइदा लिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
2: विस्तृत जानकारीका लागि वीरेन्द्र स्वास्थ्य क्लिनिक शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौंडा, फोन 06-4-14-233, मोबाइल 98-6-78-61-87।
3: स्टुडियो अहिले साँझको 7 बज्यो।
4: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौंडा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98-160-95-301।
5: सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचार सुसूचित हुन पाउने तपाईको अधिकार
6: धोरबाराही हाइलाइट्स को साथ में
7: छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवा को एउटै नाम कृष्ण आर्ट्स एन्ड अफसेट प्रेस दुलेगौंडा बीपी चोक
6: शिलालेख र छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि सम्झनुहोस् सम्पर्क 98-4-61-49-304।

0: 103 थोपलो 8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टेशन 1 स्टुडियो टाइम
2: अहिले रातिको 9 बज्यो
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: XY3 Toplo Art
1: Underman Guava
2: Station 1
3: Studio Dungeon
4: Aile, Vienna ko pass bajyo
5: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301